0: लेकिन आप हैवंट यू ऑलरेडी चेक्ड इन?
1: नहीं, मैं तो अभी नहीं। ये देखिए मेरा टिकट।
0: स्ट्रेंज, बट आई एम सॉरी, 125 हैज टेकन ऑफ।